0: हो मेरो फुलीवाली अब के छ त पिज्जा
1: के पिज्जा को फुलीवाली म त बहिनी
0: बहिनी त साली तिमी नै त मेरो फुलीवाली

0: お前ね、王子おいで、倒ってやれ。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख अरे और ये बाप रे बाप इस टाइम तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दो चार भी क्या लिखवा ले बुका अरे रे ए ए
1: और जिगर पलट